0: ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक धलाम तक झुक तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के ताक झुम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के झम तारी जग तारी तक नक तक तक झुम तक झुम तक झुम तक झम तारी जग तारी जन जाने को तक झुम तक झुम तक झुम तक तक दंग कर दम कर दंग कर दम तक दंग कर दम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग।

से नहीं हटूंगा मैं, हिला को हक डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण, तू क्यों रोता चंद्र भान, माने पीटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान, ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले।

जानकी जी और लक्ष्मण थे। वनवास के बाद अयोध्या वापस आए और भरत से मिला रहे हैं सबको कि देखो इन सब ने वनवास में हमारी बड़ी सहायता की। और जब परिचय कराया

ही हैं ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाहीं, भरत भाई कपि

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Er staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो तैयार हो जाओ जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना डन
3: डन
2: डन अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है मैंने पूछा बागों में बाहर है गर्मियों की निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है
3: ना ना।

0: प्यार है,
1: है?
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: Ujalas Zona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा

तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

दिल की चोटों ने मुझे, दिल की चोटों ने मुझे चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका रोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। इसका गम है कि बहुत देर

मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अभी आपने सुने उजाला से कॉफी चाय मेदा शो में सुन वालो खुई मेदा हलमा वेलकम ऑफ दिस मंडे मेदा हेड वर्सन। या बाहर के मौसम के बारे में नया laat ik maar daar niet te veel over uitweiden. Het is lekker, het is goed, het is mooi zo. Oejala's headlines van vandaag. Atari Junkele. Nederland begint de nieuwe week met wisselvallig weer, met buien, wolkenvelden.

0: जाना सनम प्यार होता है, प्यार होता है दीवाना सनम। उजाला के आज की स्टेलिंग है या इस हफ्ता की स्टेलिंग है गा, एंड यू कैन स्टेम ऑन ऑन फेसबुक पेजना, ऑन फेसबुक पेजना फॉर उजाला। तू जल्दी जा एंड स्टेम। एंड द स्टेलिंग फॉर कॉफी चाय फॉर दिस वीक इज वर्लीफ्ड ऑन इट ईस्ट गेसिख्ट bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht met een romantische sausje. Ja, ja. En die man is binnen hoor. Die man is binnen. Hè? Goeiemiddag. Welkom, welkom Anand.
1: Mooi, mooi romantische stemming met Tubate. Hem de kila.
0: Altijd.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो, डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हिल नीलम, तू जाने है तो।

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden. Wel vielen bij Delft op de A13 vanaf...
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया

0: सुना चिड़िया
1: चिड़िया चिड़िया चिड़िया। अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

हैं बीनू कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस आई बिन कोटराव तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया यह है उजाला रेडियो और अब बजने जा रहा है ये गीत आपके खातिर उजाला रेडियो पर हम बजाते हैं तोर खातिर

0: उजाला रेडियो के साथ म्यूजिक नॉनस्टॉप फ्लो चलता रहे। हाँ, आप हमारे साथ दीद रही है।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
2: राइट।
1: कूल। वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
2: नदी जमे जते।
3: नदी जमे जते। आह, इट्स सो सेक्सी।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप इत्मीनान से, सुकून के साथ प्रोग्राम सबरंग से लुत्फ उठाइए, मज़े लीजिए। ऐ खुदा, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात है, पर तू सब जानता है। उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें वो सब अता कर जिसके उन्हें ज़रूरत है, और उनको ज़िंदगी भर खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए।

आये दुआ लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में। अखिया हरी दर्शन की प्यासी सुनवाएंगे सुरीली आवाज में हेमंत शुक्ला।

सूरदास भजन आपने अभी गायिका हेमंत शुक्ला की सुरीली आवाज में सुना। मैं हैरान हूँ कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत कब हुई। जब भी मोहब्बत लफ्ज आता है ना, जब भी मोहब्बत लफ्ज आता है तो सिर्फ तुम्हारी ही चेहरा याद आता है। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीतूं जिगर को मैं।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान शायर मिर्ज़ा गालिब का कलाम था। मौसिकार ख़याम की मौसिकी और महेंद्र कपूर अपनी आवाज़ से इस गज़ल में चार चांद लगाए हैं। मोहब्बत मोहब्बत पलकों पर कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकती ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब, फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों की सारी परिंदे उड़ जाती है, सारे सपने कहीं खो गए।

छू लेने वाली खुशबू पेश थी अवका याग्ने की आवाज में। कलाम था शायर जावेद अख्तर का, मौसिकी राजू सिंह की। इंतजार, इंतजार की आरजू अब खो गई है, खामोशियों की आदत हो गई है। ना शिकवा रहा ना शिकायत किसी से, अगर अगर है तो एक मोहब्बत इन तन्हाइयों से हो गई है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो।

खम्मा की लाजवाब गजल पेश थी गायिका और अदाकारा सुरैया की आवाज में। कलाम था शायर मिर्जा गालिब का। मौसिकी थी मौसिकार गुलाम मोहम्मद की। प्यार प्यार दिल है दिमाग नहीं, प्यार प्यार सोच है आवाज नहीं, कोई आंखों से नहीं देख सकता प्यार के जज्बों को, क्योंकि क्योंकि प्यार एहसास है अंदाज नहीं।

0: मेरा।
1: अनमोल नगमा पेश था महेंद्र कपूर की आवाज में, नगमकार था एस हा बिहारी, मौसीकी थी ओपी नैयर की। अब सुनवाते हैं स्वर की मालिका लता मंगेशकर से ये नगमा।

सदाबहार नगमा पेश था शायर शकील बदायूनी का, लिखा तर्स था मौसिकी थी नौशाद अली की। लग जाए ठोकर, लग जाए ठोकर तो पलट कर लौट आना, गोरी चलो ना हंस की चाल, जमाना दुश्मन है।

सदाबहार दो गाना पेश था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। दुख हो, दर्द हो, साज हो या बीते दिनों की आवाज़ हो, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम भी उदास हूँ।

कम्मा का नगमा पेश था मुकेश की शहद भरी आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसिकी थी और दिल की कलम से दर्श को लिखे थे शायर राजा मेहदी अली खान। मोहम्मद रफी क्या सुनाने को जा रहे हैं अपनी मधुर आवाज में, लीजिए पेश है।

फिल्म कन्यादान में से ये नगमा पेश था। नगमाकार था शायर नीरज, मौसीकी से सवारे थे शंकर जयकिशन। उमंग भरा गीत आइए सुने, जी हाँ, गीता दत्त की आवाज़ में।

शोखी भरी आवाज में पेश था ये गीत। गीतकार था शायर राजेंद्र कृष्ण, संगीत से सवारे थे मदन मोहन।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारूफ शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है। हमने कोशिश किया है छोटी रूप में धर्म जी की फिल्मी सफर के बारे में बयान करने को, कैसे थी उनके पर्दे के पीछे की जिंदगी, उस पे हमने जरा सा रोशनी डाला है तो एहसास हुआ कि धर्म जी की निजी जिंदगी हम सब से अलग नहीं था। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्मेंद्र शोहरत की बुलंदियों पर था, लेकिन साथ ही साथ अपने बीवी प्रकाश के साथ बच्चों को जो सभ्यता, संस्कार, तालीम व तरबियत दिए है, पले बड़े हैं, आज भी बरकरार है। धर्म जी की पहली बीवी बच्चों के बारे में इतला तो किया, पर धर्मेंद्र का दूसरा दयाल खानदान भी है और धर्म ने ये फखर से कहा था। पर कब और कैसे धर्म जी की पहली मुलाकात हुई थी अपनी दूसरी बीवी से, पहले एक गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

पहली नजर में हमने अपना दिल दिया था तुमको। फिल्म द बर्निंग ट्रेन का गीत पेश था और ये जुगल गीत धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और प्रवीण बाबी पर फिल्माया गया था। धर्मेंद्र जी को अपना खानदान, मतलब बीवी बच्चे होने के बावजूद उसने दोबारा शादी किया था अदाकारा हेमा मालिनी के साथ नेहतीन तख्तक में, और इन दोनों को दो बेटियां हुई, ऐशा और अहाना दियो। धर्मेंद्र कहा कि इस हकीकत पर खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने दोनों घरों को संभाल सकता था, दोनों खानदान को खुश रख सकता था। पर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी फिल्म शराफत, फिर तुम हसी मैं जवान और नया जमाना। इन तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्म थे। आवाम इन फिल्मों को पसंद किया और ख़ास करके इन फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। हेमा मालिनी ने कहा कि आवाम हम दोनों की जोड़ी फिल्मों में पसंद किया था। तीनों फिल्में सुपर हिट फिल्में थी, पर वो महसूस किया था कि ये ना सिर्फ फिल्मी की मोहब्बत थी बल्कि मोहब्बत की शुरुआत का एक हकीकत जोड़ा था। शुरू में मैं उसे सिर्फ पसंद करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। हाँ, धर्मेंद्र को बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उनकी पहली मुलाकात इससे कितने साल पहले हो चुकी थी। कब और कहाँ पहली बार मिले थे, एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म शराफत में से ये गीत पेश था। ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक साथ पहली फिल्म थी, पर इन दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले थे? मुझे अब्बास की फिल्म आसमान महल की प्रीमियर में शामिल होने की दावत मिला था। मैंने अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर के लिए दस्तखत की थी। मेरे साथ थी मेरी मम्मी। सब मेहमानों के बीच खड़े थे शशि कपूर और धर्मेंद्र, और जब उन्होंने मुझे देखा तो पंजाबी में मुस्कुराते कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है, ये हेमा मालिनी ने कहा था। फिर उन्हें उनके सामने राज कपूर की ड्रीम गर्ल के तौर पर तारीफ कराया गया। फिल्म सपनों का सौदागर, जिसमें राज कपूर के साथ काम किया था और अवाम उस फिल्म को पसंद किया। उसके बाद हमने कई और अदाकारों के साथ काम किया। हेमा जी ने कहा, मुझे धर्म जी के साथ काम करने की इंतज़ार रहता था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं किया। हेमा जी ने कहा कि नेखती फैफ सिर्फ तक हम दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम किया। एक सैनिक के लिए धर्म जी कई बार रिटेक कराते थे, खास करके जब प्यार भरे सैनिक होते थे। धर्म जी हेमा के साथ शूटिंग पर आने के बहाने ढूंढते थे, तब भी जब उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। अब हम आपको फिल्म नया ज़माना में से एक गीत सुनवाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो हेमा जी पर फिल्माया गया था। इसी फिल्म में थे हेमा के साथ धर्मेंद्र।

हेमा ने कहा कि इतनी सालों बाद वक्त के साथ साथ वो खुद धर्म जी की तरफ खींचती गई। वो जज्बा एहसास अंदर से महसूस कर रही थी और कहा हेमा ने, आखिरकार अपने मुस्तकबिल के शौहर का तसव्वुर बिल्कुल धर्मेंद्र जैसे ही किया था, बस फर्क ये था कि वो गैर शादीशुदा हो। लोग अब हेमा की और धर्मेंद्र के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, अफवाहें थे। इसके वजह से घर में तनाव था, वो उलझन में थी और कहा हेमा ने, ये तो तकदीर और मेरा नसीब था। वो अपने वालदैन पर नाराज थी इसलिए क्योंकि माँ बाप एक मुनासिब खुशखिक्त लड़का तलाश करने की जुनून जो था। लड़का चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन या अदाकार, धर्मेंद्र ने अपने जिद पर कायम था। वो हेमा जी से शादी करना चाहा। हेमा ने कहा कि हम दोनों एक साथ कई फिल्में बनाए, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान हफ्तों महीने देश विदेश में साथ थे। और फिर ये एक आदत बन गई कि हम हर वक्त एक साथ रहते थे। घर में तनाव स्पानिंगन था और कहा कि फैसला जो वो अब लेंगे इससे माँ बाप खुश नहीं होंगे। फिर एक दिन हेमा ने धर्म जी को फ़ोन किया और कहा कि मुझसे अभी शादी कर लो। ये लफ्ज सुनने के लिए धर्म जी बेताब था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया शादी करने को, पर अफवाहें थे कि दोनों ने शादी करने के लिए पहले इस्लाम मज़हब को कबूल किया था। लेकिन धर्म जी और हेमा ने हमेशा इस इल्ज़ाम को इनकार किया और कहा कि पार्लियामेंट की मेंबर्स की हैसियत से ये दोनों के खिलाफ एक सियासी चाल थी। इन दोनों की शादी अयंगर तौर तरीके से हुई थी। धर्म जी की तरफ से सिर्फ उनके वालिद था। शादी के मौके पर धर्म ने एक वेश्ती साउथ इंडियन रिवायती लिबास पहना हुआ था। पंडित प्रधान ने कहा कि तकरीब औकफेर अयंगर रिवायत के मुताबिक की गई थी और कहा पंडित प्रधान ने कि शादी का दिन 2 मई नेहन तख्त में था।

ये शादी इंतहाई निजी यानी प्रीफेम मामला थी और ये शादी हेमा के भाई के घर में हुई थी। हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती ने उनकी शादी में मौजूद नहीं थी। माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। कहा गया कि धर्म पहले ही अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर से शादी कर चुकी थी और उसे कानूनी तौर पर तलाक नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने हेमा जी के शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। हेमा की माँ से जब सुनालिस्त सवाल किया कि क्यों वो शादी में शिरकत नहीं की, तो उसने कहा कि ये शादी तामिल की रीत और रिवाज की मुताबिक नहीं हुई थी और वो चाहती थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करे। कहानी दिलचस्प है, पहले एक गीत सुनवाते हैं।

फिल्म रजिया सुल्तान में से ये नगमा पेश था। इस फिल्म में अहम किरदार में थे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। इस नगमा से पहले आपने सुना कि शूना लिस्टन जब हेमा की माँ से सवाल किए कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों थी, तो माँ जया चक्रवर्ती ने कहा कई वजह थी। धर्म जी शादीशुदा था, चार बच्चों का बाप और मेरी उम्र का था। मैगजीन वाले ने लिखे कि शादी के दिन धर्मेंद्र अपनी बीवी हेमा को दो हीरे की अंगूठी दिया था और उसके वालिद अपने नई नवेली बहू को एक साड़ी दी थी। हेमा ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने बहुत पहले ही उसे जहनी तौर पर दिल और दिमाग से अपना जीवन साथी बना लिया था और ये रीत और रस्में सेरेमोनी सिर्फ हमारे परिवारों को खुशी करने के लिए थी। यहाँ तक कि धर्म मुझे एक अयंगर मंगलसूत्र भी दिया था। कुछ सालों बाद हेमा जी अपने बेटियों ऐशा और अहाना के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी किसी दूसरे खानदान से मुकाबला नहीं करती थी। और कहा हेमा ने, मैंने मोहब्बत की है, बदले में उनसे कुछ मांगा नहीं। धर्म अभी भी अपने पहली बीवी प्रकाश और बच्चों का ख्याल रखता है और वो हमेशा अपनी बेटियों ऐशा, अहाना और मेरे लिए मौजूद रहते हैं। बच्चे जब अपने वालदैन के बारे में हकीकत जाना तो उन्हें एतराज़ नहीं हुआ। ऐशा दियोल अपनी किताब में लिखा कि अगर मेरी माँ ने एक अयंगर से शादी की होती तो आज वो सिर्फ एक घरेलू बीवी होती। हेमा ने कहा कि घर के कुछ कायदे कानून था, ऐशा और अहाना दोनों को शलवार कमीज पहननी थी और जीन्स पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, शॉर्ट्स या तंग लिबास भी मना था। धर्म जी कुछ बातों के बारे में संजीदा सीरियस था। वो एक क्लासिक पंजाबी बाप था, लेकिन आज़ाद ख्याल हेमा की बदौलत धर्म जी खुद बदलने लगा। उसने मेरी किसी क्लासिकल डांस में शिरकत नहीं थी। एक बार मेरे डांस देखने के बाद धर्म जी मुझसे कहा, आप बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जैसे आपका ताल्लुक मुझसे नहीं है। अब मैं तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस मंच पर कभी भी नहीं देखेंगे। और कहा धर्म ने, बच्चों को डांस मत सिखाना। पर हेमा की जिद थी, वो अपनी बेटियों को क्लासिकल डांस सिखाई। लेकिन उन्हें देखने के बाद धर्म ने अपना इरादा बदल लिया। हेमा ने कहा कि ये उसका कसूर नहीं था कि उसने ऐसी सोच ऐसे ख्याल रखा था। फिर धर्म ने अपने बेटियों ऐशा और अहाना से कहा, मम्मी की जैसे करो डांस। डांस तो ठीक है, पर फिल्मों की तरफ एक्ट्रेस बनने का ख्याल, इसके बारे में सोचना ना कभी। इसके इजाज़त नहीं मिलेंगे। आगे क्या होता है? धर्मेंद्र अपने बेटियों को एक्ट्रेस बनने की इजाज़त देंगे या नहीं, अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। अब इस जुगल गीत के साथ इस हिस्से का प्रोग्राम फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान शख्स धर्मेंद्र साहब के बारे में बयां किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं ये ड्यूएट।

सदाबहार दो गाना पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में। मोहब्बत भरे अंदाज में लुत्फ उठाइए इस नगमा से।

नरेंद्र कपूर की शहद भरी आवाज़ में पेश था ये नगमा। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाता है। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसीलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं।

कहानी किस्मत की दिल छू लेने वाली नगमा पेश था मुकेश की दर्द भरी आवाज में। अब आइए सुने अगला गीत।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

जाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। गीत जो अभी आपने सुना फिल्म अधूरी दुल्हन में से लिया है। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की। संगीत सवारने वाले थे संगीतकार त्रिवेणी भवन। इतना दर्द ना दिया कर ऐ जिंदगी, हर किसी के पास हमदर्द नहीं होता। बहुत थे हमारे भी दुनिया में अपने, मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, तो आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था, शायर इन दीवार का कलाम था, आवाज मुकेश जी की। पल पल पल पल तरसे उस पल के लिए, पल आया भी तो, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। सोचा था उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना लेंगे, पर वो पल भी रुका तो बस एक पल के लिए।

जी हाँ, ये पल भी खूबसूरत है ना, क्योंकि आप उजाला रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं, इतना यकीन है मुझे। इसी अंदाज में सुनवाते हैं ये नगमा, आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की।

उमंग भरा गीत पेश था रोशन की सजाया संगीत बोल था साहिर लुधियानवी का। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो सुनाने को जा रही है स्वर की मालिका लता मंगेशकर ने।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का नगमा पेश था। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। इस खूबसूरत नगमा के बाद मैं क्या सुनाऊं? हाँ, तो लीजिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में ये नगमा।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा कलाम शकील बदायूनी का और मौसिकार रवि की मौसिकी थी। फासले फासले तो दिलों को हुआ करते हैं, दूरी के नहीं, जाने वाले तो तस्वीर में भी मिल लेते हैं।

जमीन आसमान नहीं मिलते, राहुल देव बर्मन का संगीत रचना और अनजान का गीत रचना था। मन्ना डे से सुनवाते हैं ये नगमा, दर्श है तुम्हें प्यार करूं हरदम।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा मन्ना डे की आवाज में। मुकेश जी और लता मंगेशकर से पेश है ये दो गाना।

एक प्यार का नगमा है, एवरग्रीन सॉन्ग पेश था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, संगीत था और आनंद संतोषी का लिखा तर्स। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वाले का कभी सुकून नहीं मिलता। और ये प्रोग्राम का आखिरी नगमा है।

और इस नगमा के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमाती निशा।